देह शरीर गेह घर दारा स्त्री देह गेह दारा धामनु मेलवु ममता ने मान आटली वस्तु मूके त्यारे साचा अर्थमा भगवानना भक्त थवाय। दादा खाचर एवा उत्तम कोटीना श्रीजी महाराजनी माळाना मणका समा भक्त छे। एमनी इच्छा नथी छता आज्ञाथी एने परणवानु थाय छे। महाराजनी आज्ञा छे, दादा खाचर हा पाड़े छे। एक शरत मूके छे, शरत स्मृति माटे छे कि सलूणी मूर्ति याद आवे तो बीजी कोई विषय वासना के व्यवहार वच्चे आवे नहीं। दादा खाचर कहे छे कि महाराज जेवी रीते अर्जुननो रथ भगवान कृष्णे हाँक्यो हतो एवी रीते जो तमे मारो रथ चलावो तो हूँ परणू। महाराज हा पाड़े छे। ગઈકાલે આપણે જોઈ ગયા એ પ્રમાણે ભટવદરના નાગપાલ વરુના દીકરી જસુબા સાથે દાદાનું સગપણ કરે છે। હવે દાદાની જાન જઈ રહી છે, જાનમાં કોને કોને જવું મહારાજ પોતે જ નક્કી કરે છે કે દાદાને પરણાવવા જઈએ છે તો જાનમાં કોણ કોણ આવશે,

चरित्र गाऊं प्रभु जी तमारा, अखंड सौभाग्य गणी अमारा, इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी, स्मृति रहो अंतर मातमारी, मंगल मूर्ति महाप्रभु श्री सहजानंद सुखरूप,

गुण तमारा गाववा बुद्धि आपजो सुख कंद। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। अक्षर